सिर्फ 20 या 25 दिन में हम आपके गंजे सर को इंशाल्लाह बालों से भर देंगे। सर की जिस जगह से आपका बाल गिरा है बिल्कुल अल्लाह के करम से उसी जगह पर बाल आपका वापस आएगा, वो भी इंतहाई तेजी के साथ, और इंशाल्लाह फिर मरते दम तक आपके बाल गिरेंगे नहीं। ये ऑयल सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 दफा आप सर पर अप्लाई करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह के करम से आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। हमारी प्रोडक्ट अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ओरिजिनल खालस और एक नंबर है। इसमें अल्लाह के करम से किसी किस्म का कोई झूठ और गलत बयानी बिल्कुल हरगिज नहीं है। इसके अलावा बालों की हर किस्म की बीमारी इंशाल्लाह हफ्ते भर में खत्म हो जाएगी, चाहे बाल चर है, खुश्की है, सिकरी है, रूखापन है या ग्रोथ का इशू है। अभी हमसे राब्ता करें, मुकम्मल मालूमात लें और अगर आपको तसल्ली होती है तो हमें ऑर्डर आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।

सिर्फ 20 या 25 दिन में हम आपके गंजे सर को इंशाल्लाह बालों से भर देंगे। सर की जिस जगह से आपका बाल गिरा है बिल्कुल अल्लाह के करम से उसी जगह पर बाल आपका वापस आएगा, वो भी इंतहाई तेजी के साथ, और इंशाल्लाह फिर मरते दम तक आपके बाल गिरेंगे नहीं। ये ऑयल सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 दफा आप सर पर अप्लाई करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह के करम से आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। हमारी प्रोडक्ट अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ओरिजिनल, खालस और एक नंबर है। इसमें अल्लाह के करम से किसी किस्म का कोई झूठ और गलत बयानी बिल्कुल हरगिज नहीं है। इसके अलावा बालों की हर किस्म की बीमारी इंशाल्लाह हफ्ते भर में खत्म हो जाएगी, चाहे बाल चर है, खुश्की है, सिकरी है, रूखापन है या ग्रोथ का इशू है। अभी हमसे राब्ता करें, मुकम्मल मालूमात लें और अगर आपको तसल्ली होती है तो हमें ऑर्डर आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।

साथ साथ ही ए चिबिया हमदने एरी की गाना वे तू मेरा दर्द तू मेरा हम दर्द दर्द दर्द दर्द दर्द नु बस इंशाल्लाह भी अब दर्द यादी की आओ कनी भी गाना नु बस दजान बीबी जान तिदी वे गाना बस दलास न बदल लियो खत शांताओ की बस यांगी लगूरी गाना मज भी अब दर्द दर यादी की ठीक शुजी हम दर्द कॉस्मेटिक आ बिल्कुल जी जमु होलसेल डीलर दे आ तासुती वर्तले ले शे जमु डिस्ट्रीब्यूशन दे वरसरा जमु तकड़ो रोड सुहेल से बबा की मौजूद भी और कला दाम उड़त हुई ले चीज द रेडियो द साइड ना अगले म वा वा वा वा वा वा वा बिल्कुल दूध पति चाय और मिल्क शेक बदरवानी इसकी हां जमा द साइड ना नुपता मदीना मार्केट निजी मियागानो जुमात मरगुस सवाबई ठीक छु जी उम्मीद है पता बदर सर याद भी ब्या हम के दे चाने हीरी की मुक्सर पर हेल्पलाइन माने रब्ता कोलिशी याद जुबेर से सर रब्ता कोलिशी याद जमुंग पसे पर 335 400 35 35 15 अवेलेबल कोल वाणी तो बिल्कुल जी अवेलेबल कोल शो दे सर सर बिल्कुल तो प्रोग्राम तो हम राशि मास्टर प्रोग्राम की बरख वाखली आया चिकम माद माशुमानो द मुकाबिलो खबर उकड़ला नुकपदी की तासु इंटरेस्ट हुई कदा सासु खखशी हुई नु चीज सबान द मुकाबिलो आगाज कम न के तासु बके बरख ना अखली तासु खख नि नु बिया बस आगाज चाहतो कम पखपला बना तो इमो बस मेरे से तो मालीना मरा कवनो

ओके जी, बेहतरीन शायरी हुरैन, थैंक यू सो मच. और खाजी, अस्सलाम वालेकुम, आई एम गुड, मैं डेली आपका शो सुनती हूँ, कल मिस हो गया था क्योंकि कल मैं पेशावर गई थी, नानी की घर मोबाइल घर भूल गई थी. आप तो गुड मॉर्निंग, और आपको जो ओके जी गुड मॉर्निंग बोल देते हैं, मैं तो डेली मैसेज करती हूँ सपना. ओके जी, ये क्रीम हिजरो के कौन सी दुकान से मिलेंगी, दुकान नंबर बता दे. और ओहो सुनता है सब की दुआ करके देखो प्लीज प्लीज सांबा ये ना प्ले कर दे. ओके जी, मैं बिल्कुल, ये हिजरो है ना, या हिजरो है इसका नाम, मैं जहाँ हमारी प्रोडक्ट मिलती है तो मैं आपको बताता हूँ सपना, आप लोग बिल्कुल वहां जा सकते हैं, उधर से हमारी प्रोडक्ट इजना कॉस्मेटिक पाकिस्तान ए टू जेड प्रोडक्ट जो है ना हासिल कर सकते हैं. ठीक है जी, हिजरो में न्यू सुपर तारिक कॉस्मेटिक एंड होलसेलर डीलर ममरीज खान मार्केट. सदा आप कान को खोले याद रखे इस नाम को, ठीक है, अगर भूल गई तो खैर मुझे, प्रोग्राम होने तक आप दोबारा मैसेज कर सकते हैं, मैं बता दूंगा. और अगर आप चाहते तो मैं मैसेज के थ्रू भी हमारा इजना कॉस्मेटिक पाकिस्तान का जो टीम है वो आपको एड्रेस भी सेंड कर सकते हैं. न्यू सुपर मार्केट तारिक कॉस्मेटिक एंड होलसेलर डीलर ममरीज खान मार्केट मैन बाजार हिजरो, लंदन कॉस्मेटिक मीना बाजार और वाजिद कॉस्मेटिक मीना बाजार. ठीक शो जी, ये आपने याद रखना है, लंदन कॉस्मेटिक, वाजिद कॉस्मेटिक, न्यू सुपर तारिक कॉस्मेटिक, ममरीज खान मार्केट. ठीक है जी, इसको आपने याद रखना है, अगर भूल गई तो डोंट वरी, और अगर भूलने की बीमारी है तो आप साथ में एक अलमंड हेयर ऑयल को भी लेके आए, इंशाल्लाह आपके अगर सर पे दर्द आया करेंगे तो वो फिर नहीं आएंगे. ठीक है जी, और इसी के साथ साथ दिमाग भी तेज हो जाएंगे बादाम के ऑयल के इस्तेमाल से, इसके साथ खून की गर्दिश में भी जो है ना बेहतरी आती है. अगर कोई चाहता है कि हमारी सर की खून की गर्दिश में बेहतरी आए तो अगर आपकी खून की गर्दिश आपने ठीक करवाना है या जो है ना आपके सर में दर्द बार बार आता है तो उसके लिए भी बेहतरीन ऑयल है, आप लोग चॉइस कर सकते हैं. और अगर बालों में, बालों को तो जरूर फायदा मिलेगा, जो एक्स्ट्रा फायदे मैं वो बता रहा हूँ, शाइनिंग की तो बात ना करें, वाह वाह इतनी शाइनिंग की दूर से नजर आओगे, ये तो लोग वैसे ही माशाल्लाह कहेंगे और आपसे पूछेंगे. अगर आप बाइक पे सफर करेंगे ना तो आपको इस तरह, जिस तरह जो ना सवारी के लिए लोग इशारा देते हैं तो आपको इशारा देंगे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, आप ठीक ठाक है भाई, आप कौन सी ऑयल लगाते हो, कौन सी शैम्पू लगाते हो, आप पूछोगे कि क्यों, वो कहेंगे दूसरी तरफ से कि यार बहुत कमाल माशाल्लाह इतनी प्यारी सी बाल, बिल्कुल हीरो लग रहे हो. तो अपनी आपको अगर हीरो बनाना है तो इंतजाम आपने इजना कॉस्मेटिक पाकिस्तान शैम्पू और ऑयल की कर सकते हो. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम कहते हैं, शो इज वेरी नाइस है, बाय सलाम टू ऑल लिसनर, आई एम गुलाली फ्रॉम टांग, मोहब्बत का नाम से हुद हुदा भी ना अब. ओके जी, बाय द शांगली और मलकण वाला लिसनर खोसम खामोश दी कला कला खुदी अशु तम मैसेज की गुलाली, बिल्कुल जी गुलाली दा ठीक खबर है दी अगले पकार दी मैसेज की. और गुलाली कभी कभी आपने नाराज नहीं होना, कुछ मैसेज इस तरह होते ना जो हम शामिल नहीं कर सकते, आप लोगों को आपको पता है कि उसमें फिर कुछ तजाद आते, कुछ मसले आते, तो इस वजह से वो शेर और शायरी में शामिल नहीं करते. शायद आप यही सोचेंगे मैं तो किसी शो में या मैसेज करता हूँ एंटरटेन वाले शो में, उसमें ये शामिल होता है या पहले शामिल हुआ था या किसी और ने शामिल किया था, तो उसका मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बताते खुद उस शेर को शामिल नहीं कर सकता. ठीक है, आपने बिल्कुल नाराज नहीं होना, चिल रहे हैं. और आपने ये कौन सा वाला नात मुझे बताया.

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: It's 10 o'clock.
2: It's 10 o'clock.
1: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
0: Welcome to Radio Aman 88.4.
3: You are listening to Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
5: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? आप फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-9363-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।

0: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-9363-780, व्हाट्सएप नंबर 0342-2648-435।
1: Oh, 88.4

0: हमारे साथ रहिए।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है, वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन फयकून का मालिक है, एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

0: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: बीमारी हक दे अवेलाजी सुनत अमल दे अवेलाजी सुनत अमल दे
3: ओस कचेरे तासु तदा से अमराज भी चितासु वरना ढेर परेशान आयो और ढेर गर्जिदली कड़ीदली यो ढेर गर्जिदली कड़ीदली यो
2: नो बिल्कुल मायूस के गई मां मायूस के गई मां अल शिफा दवा खाना शवाल मार्केट टांग सिटी दा तशरीफ रावड़े और द हकीम मौलाना नूरुल हुदा सेवना पल इलाज तरला सकवले शे
3: और द नूरु मालूमात दे पारा पदग नंबर काल कवले शे
2: 0319 55 23 404

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुमैल डीआई खान से। चंद अरसा पहले मैंने टिकटॉक पे एक राइस फेस वॉश देखा था जिसको मैं ऑनलाइन मंगवाती थी, मगर इसका रेट बहुत ही ज़्यादा हाई था। फिर मुझे किसी ने इश्मा राइस फेस वॉश का मशवरा दिया। इसी वक्त से लेकर आज तक मैं इश्मा राइस फेस वॉश इस्तेमाल कर रही हूँ और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। सब बहन भाइयों को यही मशवरा देती हूँ कि इश्मा राइस फेस वॉश इस्तेमाल करें, ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसकी कीमत जो है वो 350 रुपए है और डीआई खान और मुख्तलिफ केपीके के इलाकों में हर छोटी बड़ी शॉप पर दस्तियाब है। स्पेशली उन बहन भाइयों के लिए जिनके चेहरे पर एक्नी है और आयल का मसला है। मजीद मालूमात के लिए 0342 311 2292 पर कॉल कर सकते हैं।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुमैल डीआई खान से। चंद अरसा पहले मैंने टिकटॉक पे एक राइस फेस वॉश देखा था जिसको मैं ऑनलाइन मंगवाती थी, मगर इसका रेट बहुत ही ज़्यादा हाई था। फिर मुझे किसी ने इश्मा राइस फेस वॉश का मशवरा दिया। इसी वक्त से लेकर आज तक मैं इश्मा राइस फेस वॉश इस्तेमाल कर रही हूँ और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। सब बहन भाइयों को यही मशवरा देती हूँ कि इश्मा राइस फेस वॉश इस्तेमाल करें, ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसकी कीमत जो है वो 350 रुपए है और डीआई खान और मुख्तलिफ केपीके के इलाकों में हर छोटी बड़ी शॉप पर दस्तियाब है। स्पेशली उन बहन भाइयों के लिए जिनके चेहरे पर एक्नी है और आयल का मसला है। मजीद मालूमात के लिए 0342-311-2292 पर कॉल

0: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
3: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।

नेशनल पाकिस्तान का प्रोग्राम, ये तीनों रेडियो स्टेशन से आप लोग इस वक्त 4 से लेकर 5 बजे के घंटे में सुनते हैं। और आज भी मैं आप लोगों के साथ मौजूद हूँ बिल्कुल लाइव एंड लाइव बरह रास्त प्रोग्राम के साथ। आज दिन है जुमेरात का और आज है 18 जून 2026। तो सामिन ग्राम कैसे हैं आप सभी लोग? हमेशा की तरह आज भी मैं यही उम्मीद करूंगा कि मेरे तमाम जाने वाले, तमाम लिसनर, तमाम फैंस, तमाम यूजर बिल्कुल ये अख्फियत और खैरियत के साथ होंगे। जी जनाब, मुहर्रम अल हराम का मुबारक महीना, मुकद्दस महीना। आज 2 मुहर्रम अल हराम है। मुहर्रम के हवाले से हमने खसूसी ट्रांसमिशन का आगाज किया हुआ आप लोगों के लिए, डेरसमल खान टांक और पहाड़पुर में सुनने वालों के लिए। ये सिलसिला 10 मुहर्रम अल हराम तक जारी रहेगा और इस 4 से 5 बजे के नशे में इस हवाले से माह मुकर्रम के हवाले से, माह मुकद्दस के हवाले से, सॉरी मुहर्रम अल हराम के हवाले से, बेसिकली ये कुर्बानियों का, शहादतों का महीना है, अजीम महीना है जिसने इस्लाम को बचाया है, इस्लाम की बका की वजह बना। तो दास्तान करबला केसर नेशनल पाकिस्तान का प्रोग्राम जब से आप सुन रहे हैं, वो भी उन्हीं के साथ साथ हम आपको ये दास्तान भी बहुत ही डीपली सुनाते रहते हैं। लेकिन इस दफा हमने थोड़ा यकम मुहर्रम से जो है दास्तान करबला स्टार्ट नहीं की है, बल्कि दास्तान करबला जो है वो आपकी खिदमत में हम 4 मुहर्रम अल हराम से 6 मुहर्रम अल हराम के दरमियान जो है वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। जैसे कि यकम मुहर्रम अल हराम हजरत उम्र फारूक रज़ी अल्लाह तआला को यौम शहादत है, तो उस हवाले से हमने खुसूसी प्रोग्राम पेश किया। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की शहादत 18 ज़िलहिज्जा को होती है, लेकिन चूंकि हमारे ट्रांसमिशन रमजान सॉरी मुहर्रम ट्रांसमिशन अब स्टार्ट हुई है, तो उनकी शहादत के भी आज के प्रोग्राम में जिक्र होगा। मजलूम मदीना के नाम से उनको याद किया जाता है। 40 दिन तक हमारे खलीफा सोम का 40 दिन तक मुहासरा किया गया और बिलाखिर उनको शहीद कर दिया गया। उनके हवाले से भी आज प्रोग्राम में उनकी शहादत का जिक्र करेंगे और कल हजरत अली करम अल्लाह वजह की शहादत है उसका भी जिक्र करेंगे। फिर उसके बाद जो है वाकई करबला को आपकी खिदमत में तफसीलन पेश करेंगे। जनाब मुझे कहते हैं खलील दाबे जवान और केसन नेशनल पाकिस्तान। केसन वो कंपनी है जो आप लोगों के लिए ढेर सारे प्रोडक्ट्स को तैयार कर रही है और इन प्रोडक्ट्स का ताल्लुक जो है वो आप लोगों की सेहत के साथ है, इन प्रोडक्ट्स का ताल्लुक आप लोगों की खूबसूरती के साथ है, इन प्रोडक्ट्स का ताल्लुक आप लोगों की शिफा के साथ है। हम कोशिश करते हैं कि जनाब कुदरत के वो खजाने जो आपके लिए फ़ायदेमंद हैं, चाहे वो हेल्थ की प्रोडक्ट्स की सूरत में हों, चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स की सूरत में हों, इस कंपनी की जो बुनियाद है, जैसे आप इस कंपनी का नाम देखते हैं केसन नेचुरल्स, तो जनाब इस नाम से ही आपको अंदाज़ा होता है कि ये ऐसी कंपनी है जिसकी बुनियाद जो है वो नेचर के ऊपर है और नेचुरल चीज़ों को ही हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सामिन ग्राम, मेरा ताल्लुक जो है, मैं तकरीबन 14-15 साल मेडिकल की फील्ड से अटैच रहा हूँ, बड़ी पोस्ट के ऊपर मैंने काम किया है और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज और बड़े बड़े के बड़े बड़े कन्वेंशन अटेंड किए, बड़े बड़े डॉक्टर्स के साथ और बड़े बड़े जो मेडिकल की फील्ड में रिसर्च रखते हैं उनके साथ ताल्लुक रहा है। तो एक चीज़ मैंने महसूस की कि जनाब पिछली 10 सालों के अंदर जनाब एकदम से एक तब्दीली आई और मेडिकल की दुनिया में तकरीबन कंपनियाँ जो है वो केमिकलाइज मेडिकल के प्रोडक्ट से निकल कर नेचुरल प्रोडक्ट की तरफ, यानी कि जो है न्यूट्रास्यूटिकल रेंज की तरफ। पहले फार्मास्यूटिकल इस्तेमाल लफ्ज होता था, डॉक्टर जो प्रोडक्ट लिखते हैं उनको फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कहा जाता है, लेकिन पिछले 10 साल के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है इस फील्ड के अंदर, मेडिकल फील्ड के अंदर, कि जनाब न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट लॉन्च किया गया, फार्मास्यूटिकल से हटकर न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट लॉन्च किया गया। न्यूट्रास्यूटिकल कौन से प्रोडक्ट होते हैं? न्यूट्रा बेसिकली न्यूट्रिशन से निकला है, गिजायत से निकला है, और ऐसे प्रोडक्ट जो जिनको यूज करके एज ए गिजा, जिनको यूज करके एज ए सप्लीमेंट आप यूज करके अपनी बीमारियों का, ढेर सारी बीमारियों का तदारक कर सकते हैं। और दूसरी बात ये थी कि जनाब जो केमिकलाइज प्रोडक्ट हैं वो लोगों को बहुत ज्यादा, चाहे वो फार्मा के प्रोडक्ट हैं केमिकल के, चाहे वो कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट हैं, लोगों को जहाँ पर वो फायदा पहुँचा रहे थे वहाँ पर लोगों को बहुत सारे साइड इफेक्ट्स का सामना था। तो जनाब एक दफा फिर से जो है इस इंडस्ट्री ने, चाहे वो
कॉस्मेटिक की इंडस्ट्री है या वो फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री है, चाहे मेडिकल की इंडस्ट्री है, उन लोगों ने जो है बैक फुट पर गए और उन्होंने नेचर को अपने करीब लाने की कोशिश की। यही वजह है कि पिछले 10 सालों के अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी, आप इनकलाब कह सकते हैं, एक इनकलाब आ गया कि एंटीबायोटिक्स की जगह क्रैनबेरी को यूज कराया जाने लगा, कि जहां पर लोग एंटीबायोटिक्स, सिप्रोफ्लॉक्सासीन, लिवोफ्लॉक्सासीन, मॉक्सीफ्लॉक्सासीन, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे यूटीआई प्रॉब्लम्स के लिए, यानी कि जो छोटे पेशाब के या फिर मसाने के या फिर गुर्दों के मसाइल होते थे उनके लिए जहां पर एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल किया जाता था, वहां पर क्रैनबेरी, ठीक है जना, बेरी का एक दरख्त है, उसके जूस को इस्तेमाल किया जाने लगा। और इस वक्त अगर आप देखें, कोई भी लेडी डॉक्टर ऐसी नहीं होगी, कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं होगा जो यूटीआई के लिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है जनाब, यूरिन के प्रॉब्लम के लिए खवातीन और मर्द दोनों को जो है वो क्रैनबेरी साशे ना लिख रहा हो। मुझे सुनने वाले बहुत सारे लोग इस बात की तस्दीक करेंगे कि एक प्रोडक्ट जो बहुत ज़्यादा इन है वो एंटीबायोटिक की जगह जो है यूटीआई को खात्मे करने के लिए साशे आ गए हैं, वो बेसिकली बेरी के दरख्त के जनाब पाउडर है जो आप यूज करते हैं, तो कुदरती तौर पर आपको मसाइल हल होते हैं, ठीक है जनाब। इसी तरीके से बहुत सारे खांसी के सिरप इस्तेमाल किए जा रहे थे, 60-70 रुपए के मिलते थे, लेकिन अचानक एक कंपनी ने एक सिरप लॉन्च किया जिसे कोफर्व के नाम से जानते हैं लोग, ठीक है जनाब। और ये क्या था, ये भी एक पत्ते का अर्क था, ठीक है जनाब। यानी कि इतने सालों से जो खांसी के लिए सिरप इस्तेमाल हो रहे थे उनकी कीमत 60-70-80 रुपए होती थी, लेकिन ये एक नई चीज आई जो कि नेचुरल चीज थी, यानी कि ये कफ सिरप था और ये था भी 150 रुपए का, 100, यानी कि उससे 100 रुपए महंगा था, लेकिन डॉक्टरों ने इसको पसंद किया। जब डॉक्टरों को बताया गया कि डॉक्टर साहब जो आप पुराने सिरप लिख रहे हैं उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, उनके बहुत सारे नुकसान हैं, वो प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, वो बच्चों को नहीं दिए जा सकते, ये एक सेफ चीज आ चुकी है, ठीक है जनाब। तो जिस तरीके से मैं आपको बताऊं, चूंकि मैं उस फील्ड से होकर आया हूं, तो वहां पर हमने बहुत बड़ी तब्दीलियां देखी कि एकदम से दुनिया जो है, एकदम से मेडिकल की फील्ड जो है वो नेचर की तरफ आ रही है कि भाई एंटीबायोटिक को छोड़ो, क्रैनबेरी को इस्तेमाल कराओ, ठीक है जनाब। कफ सिरप नेचुरल, जो दूसरे कफ सिरप हैं उनको छोड़ो, कुदरत के कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप खांसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आईवी लीफ है, ठीक है जनाब, चाइना के अंदर ये पत्ता पाया जाता है, दरख्त पाया जाता है, उसके पत्ते का अर्क खांसी के लिए बहुत जबरदस्त है, ठीक है जनाब। तो बात करने का मकसद क्या है, सिर्फ ये मैंने आपको दो एग्जाम्पल दी है, इसके अलावा और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मेडिकल की जो इंडस्ट्री है ना वो भी नेचर की तरफ आ रही है। तो मुझे बहुत ज्यादा इस चीज ने ना मुतासर किया कि मैं अपनी कंपनी को जब लॉन्च करूंगा तो उसको प्योरली नेचर नेचुरल रखूंगा, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसके अज्जा, सब कुछ हम केमिकल की तरफ जाएंगे नहीं। देखिए, हम ब्लीच की तरफ नहीं जा रहे, केसन कंपनी के 28-30 प्रोडक्ट हैं लेकिन हम ब्लीच को नहीं बना रहे, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके अंदर बहुत ही खतरनाक किस्म के केमिकल्स को यूज किया जाता है और जो जो हमें पता है हम उन चीजों से अवॉइड करते हैं और आपकी तरफ सेफ अज़ा लेकर आते हैं। यही वजह है कि केसन नेचुरल पाकिस्तान के प्रोडक्ट आपको दूसरे कंपनियों से बहुत मुख्तलिफ नजर आते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी प्रोडक्ट नहीं है, बहुत ही खास प्रोडक्ट है हमारे, और उनकी फॉर्मुलेशन दूसरों से यकसर तब्दील शुदा है, यकसर बदली हुई है। उसकी एक वजह यह है कि उनको कॉपी नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट आप लोगों को जिस प्राइस के अंदर देते हैं, शायद कोई दूसरी कंपनी या फर्द वाहिद जब उस चीज को उठाता है और उसको लैब करवाता है और उसको बनाने की कोशिश करते हैं तो उनको वारे नहीं करती कि पहले हम जो चीजें बना रहे हैं उनके अंदर इतना प्रॉफिट है और इनके अंदर इतना कम प्रॉफिट है। तो ये कंपनी बेसिकली जो बेस है हमारी वो है आप लोगों को सेहतमंद बनाना, आपको खूबसूरत बनाना, और वो भी विदाउट साइड इफेक्ट के आपको ऐसे प्रोडक्ट प्रोवाइड करना जो कि कुदरत के खजाने हैं, और उन्हीं कुदरत के खजानों को, चाहे वो एक्सट्रैक्ट की सूरत में मौजूद है, चाहे वो पत्तों की सूरत में, चाहे वो फूलों की सूरत में मौजूद है, चाहे वो ऑयल्स की सूरत में मौजूद है, हम अपने प्रोडक्ट्स के अंदर इस्तेमाल करके आप लोगों को शिफा देने की, अल्लाह ताला के फजल करम से उन आप लोगों को शिफा याब करने की एक कोशिश करते हैं। तो जनाब, हमारी हर एक चॉइस जो होती है केसन की नेचुरल होती है, आप लोगों के लिए सेफ होती है और आप लोगों को बहुत सारे फायदे पहुंचाने वाली होती है।

ही सामने निकल रहा है। तो केसन के बहुत सारे प्रोडक्ट, और उन्हीं प्रोडक्ट्स के अंदर हमारी एक प्रोडक्ट जो बहुत मुनफरिद है और उसका कोई कंपिटिटर नहीं है, उसका कोई मुतबादिल ही मार्केट के अंदर नहीं है। आप टांग की पूरी मार्केट घूमें, आप पहाड़पुर की पूरी मार्केट मार्केट घूमें, आप डेरा इस्माइल खान की पूरी मार्केट घूमें, ये वो प्रोडक्ट है जिसका आपको मार्केट के अंदर इसका कोई भी मुतबादिल नहीं है, इसका अल्टरनेट कोई भी नहीं है। ठीक है जनाब, ये ऐसा फार्मूला है अल्हम्दुलिल्लाह जो या तो कुछ कंपनियां ऑनलाइन बना रही हैं, उनकी बेस लाइन नहीं है, वो मार्केट में मौजूद नहीं है, या फिर अगर मार्केट में कोई कंपनी मौजूद है तो वो केसन नेचुरल पाकिस्तान है, और वो है केसन का पेन किलर ऑयल जो कि खालिस कुदरती जड़ी बूटियों से बना हुआ है, जो कि शुतुरमुर्ग के तेल से बना हुआ है, और जो आप लोगों को ऐसा फ़ायदा पहुंचाता है, ऐसा फ़ायदा पहुंचाता है कि कोई और मेडिसिन आपको, कोई और पेन किलर इस तरीके से रिलीफ नहीं देता जिस तरीके से केसन का शिफाए दर्द ऑयल, ऑस्ट्रिच ऑयल आपको ये फ़ायदा पहुंचाता है। मेरी मेडिकल फील्ड से जानने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो एक दफ़ा जब हमने ये सेटअप लॉन्च किया, तो जब सेटअप लॉन्च किया तो मेरे एक पुराने कंपनी के एक ओनर थे, वो जनाब मुबारक देने के लिए आए हमारे सेटअप के ऊपर, तो उनको उनका रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ था, तो उनको वो जब बैठे तो बड़े लड़खड़ा कर बैठे और ऐसे घुटने को पकड़ लिया उन्होंने। तो मैंने कहा सर ये क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि ये एक्सीडेंट हुआ था और ये पिछले 2 साल से ना मेरे साथ मसला चल रहा है। तो मैंने कहा सर चलो ठीक है। जब वो जाने लगे तो मैंने उनको ये गिफ्ट किया शिफाए दर्द, मैंने कहा सर इसको इस्तेमाल कीजिएगा। तो उसने कहा यार मैं तो बड़ी बड़ी मेडिसिन यूज़ करता हूँ। मैंने कहा सर आप यूज़ तो कीजिएगा इसे, ठीक है ना, फिर मुझे बताइएगा। अल्लाह को जान देनी है, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये कितनी सच्ची है, अल्लाह जानता है इस बात को कि वो हमारे बॉस थे, वो लेकर गया। और उसके बाद उन्होंने मुझे ना 3-4 महीने बाद फिर कॉल की, यार खलील ये वाला ऑयल तो मुझे भिजवा दो यार, इससे तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया, बहुत ज़्यादा, यानी कि इतना मुझे मेडिसिन से फ़र्क नहीं पड़ रहा था जितना वो मेरे लिए चलना फिरना, उठना बैठना, गाड़ी चलाना, ड्राइव करना, सारा कुछ इस ऑयल से। तो ये कितना भाई, एक जो कंपनी का मालिक है, एक मेडिकल कंपनी का मालिक, वो भी जनाब हमारी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद मुझे लाहौर से कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि खलील बेटा ठीक है जनाब ये मुझे एक और भिजवा दो। आज मैं शॉप पर मौजूद था, तो एक और मेडिसिन के एक मैनेजर थे, वो आए जनाब और उन्होंने कहा यार वो मैं आपसे शिफाय दर्द एक दफ़ा ले गया था, तो वो मुझे एक बॉटल दे दे, मेरी मिसेस को बहुत ज़्यादा कमर का दर्द रहता था वो, और वो घर में मैं अपने लिए लेके गया था, उसका भी कोई ऐसा गर्दन का मसला था, तो जनाब हमने उनको दिया था एज ए गिफ्ट। तो आज फिर वो लेने के लिए आए थे, यानी कि मेडिकल के लोग भाई जो मेडिसिन को इतना अच्छे तरीके से जानते हैं, आप लेमेन जो लोग हैं वो क्या जानेंगे कि जो है नेप्रोक्सीन क्या होती है, या मूविन क्या होती है, या वोल्ट्रॉल क्या होती है, या मूवेक्स क्या होती है, आप लोगों को क्या पता। वो जो इन सब चीज़ों को जानने के बावजूद केसन के दर पर आते हैं, तो उनको पता होता है कि भाई ये जो चीज़ बनाई है इन लोगों ने वाकई वो दर्द के जड़ तक पहुंचती है, ठीक है जनाब। और यही हमारा क्लेम है, हमारा इस ऑयल को लेकर जो केसन का शिफाए दर्द ऑयल है, इसको लेकर हमारा जो क्लेम है वो यही है कि आम तेल जो होते हैं वो आपके स्किन की ऊपरी सतह पर रहते हैं, ठीक है जनाब। आप जहां पर भी मालिश करेंगे, चाहे वो कमर का दर्द है, चाहे वो कंधे का दर्द है, चाहे वो घुटनों का दर्द है, चाहे वो हाथों का दर्द है, या कोई भी आपका जोड़ है, चाहे वो डिस्क के प्रॉब्लम है, मोरे हैं, जहां पर भी आप कोई भी ऑयल लगाएंगे वो आपकी ऊपरी सतह के ऊपर रहता है, वो ऊपर जड़ी बूटियों की मदद से आपके दर्द को थोड़ा बहुत कम कर देगा। लेकिन केसन का जो शिफाए दर्द है ये अपने मौसर जादू के साथ, यानी कि इसके अंदर जो शुतुरमुर्ग का तेल है जो मुमासलत रखता है एक ह्यूमन स्किन की ऑयल के साथ, स्किन के अंदर जज्ब होकर जनाब अपना काम करता है।

0: डोमिनिक राम, आप मुझे सुन रहे हैं इस वक्त टांक के एफएम रेडियो अमन 88.4 से बराह रास्त, आप मुझे सुन रहे हैं इस वक्त ग्लोबल एफएम 91 डेर इस्माइल खान से बराह रास्त, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो पैगाम पहाड़पुर से बराह रास्त। इन इलाकों में हमारे बहुत सारी जगहों के ऊपर हमारे सेल पॉइंट मौजूद हैं, क्योंकि जनाब जब हमारा प्रोग्राम चल रहा होता है तो उसी के साथ साथ हमारे सेल पॉइंट भी आपके हर इलाके में मौजूद हैं। जैसे कि आप पहाड़पुर में मौजूद हैं तो पहाड़पुर के अंदर जनाब जीशान कॉस्मेटिक है, इसके अलावा नवीद कॉस्मेटिक है, ताजमहल कॉस्मेटिक है, फ्रेंड्स एंड फैमिली शॉपिंग सेंटर है, बिस्मिल्ला है, या फिर अवेस जर्नल स्टोर राहत घी एजेंसी के सामने है, या फिर अगर आप जो है रंगपुर रोड अगर आप आए तो यहाँ पर हैदर मेडिकल स्टोर है, नियाजी मेडिकल स्टोर है, इसके साथ साथ जमील नियाजी जनरल स्टोर है, और उसी के साथ है हसीब जनरल स्टोर। ये सारे के सारे दुकानें, ये जो आखिरी चार मैंने बताई हैं, ये हैं जनाब रंगपुर अड्डा पहाड़पुर के नजदीक, आप यहां से हासिल कर सकते हैं। डेर इस्माइल खान में अगर आप मौजूद हैं तो गुलशन कैश एंड कैरी, एक जनाब स्टेट लॉ बिल्डिंग के बिल्कुल सामने है जनाब गुलशन कैश एंड कैरी, वहां पर आप किशन की प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब आप अगर डेर इस्माइल खान के अंदर मौजूद हैं तो जितने भी बड़े कॉस्मेटिक स्टोर हैं जैसे कि गुलशन कैश एंड कैरी है, या फिर चुगल्ला के साथ है अमान हरसेरा, फारूक हरसेरा कमर्शियल मार्केट के अंदर फैमिली शॉपिंग सेंटर है, गोमल मार्केट के अंदर जो है अल फरीद कॉस्मेटिक है, मक्का कॉस्मेटिक है, ठीक है जनाब, इन सब के पास आपको किशन के प्रोडक्ट मिलेंगे। इसके अलावा जफराबाद के अंदर हमारा ये आयल, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग बहुत अरसे से दर्द का शिकार है तो जनाब जफराबाद के अंदर हाजी जरी जनरल स्टोर और उसके साथ है अब्दुल रहमान जनरल स्टोर, जनाब यहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा जनाब टांग के अंदर अगर आप मुझे सुन रहे हैं, बल्कि हकीकी यकीनी बात है कि सुन रहे होंगे, तो जनाब टांग के अंदर आप हासिल कर सकते हैं, जी जनाब टांग के अंदर आप हमारे प्रोडक्ट मंसूर जर्नल स्टोर, जो कि हमारे मेन डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ठीक है जनाब, मेन डिस्ट्रीब्यूटर टांग के अंदर हैं जनाब हमारे डिस्ट्रीब्यूटर मंसूर जनरल स्टोर सदाम प्लाजा के अंदर, आप उनसे हासिल कर सकते हैं। सदाम प्लाजा के अंदर है अरबाब कॉस्मेटिक स्टोर, इमरान जनरल स्टोर, अब्दुल्ला जनरल स्टोर, सिटी जनरल स्टोर, फैसल गिफ्ट सेंटर, इसके अलावा अजीम अजीम अजीम मार्केट जो है, अजीम कम्प्लेक्स जो है, प्लाजा जो है अजीम प्लाजा है, या फिर सदर प्लाजा है, या फिर सदाम प्लाजा है, इन तमाम दुकानों के अंदर जितने दुकानदार मौजूद हैं उन सब के पास आपको किचन के प्रोडक्ट मिलेंगे। और इसके अलावा जनाब हॉस्पिटल के साथ बिलाल मेडिकल स्टोर है, आप वहां से हमारा शिफा दर्द पता कर सकते हैं। इसके साथ साथ अरबाब मेडिकल स्टोर है जनाब हॉस्पिटल के बिल्कुल अटैच, तो वहां से भी आप हासिल कर सकते हैं। तो जनाब हमारे इन इलाकों में हमारी आवाज सुन रहे हैं आप, और उसके साथ साथ हमारी प्रोडक्ट भी आप इन इलाकों से हासिल कर सकते हैं।
1: बात नज़ाहिर है
0: जी जनाब, मुझे कहते हैं खलील ताबे शमान, और यह है केसन नेचुरल पाकिस्तान का प्रोग्राम जो आप हर रोज सुनते हैं, और आप लोगों के साथ एक वादा एक कमिटमेंट के रमजान बार बार रमजान का नाम जो है रमजान करीम का नाम मेरे जुबान पर आ रहा है, मुहर्रम और हराम का मुबारक महीना, और इस हवाले से खसूसी तरतीब हमारे सेगमेंट्स की, और इस हवाले से जो हमारे खलीफा गुजरे हैं चारों खलीफों का अहवाल हम आपको बता रहे हैं, स्पेशली उनकी शहादत का अहवाल। सो कल हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आज हजरत उस्मान गनी।

0: सिर्फ गालियां और धमकियां दे।
1: तजवीद पे जोड़ा ये दौर था बरकात का के कुफर था मिटता।
0: सामिन इकराम, जब मुहासरा सख्त हुआ तो सैयदना अलीउल मुर्तजा, सैयदना जुबैर और दीगर जलीलुल कदर सहाबा ने अपने बेटों इमाम हसन, इमाम हुसैन और अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु को हजरत उस्मान के दरवाजे पर पहरे के लिए खड़ा कर दिया।
2: सखा उस्मान गनी है, इशारो हया आप।
0: जनाब हजरत अली करम अल्लाह वजहो, मौला अली अपने दो बेटों हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन को हजरत उस्मान का पहरा देने के लिए उनके घर भेज रहे हैं।

0: बैठे रहे।
1: जी जनाब, इन नौजवानों यानी कि कौन कौन नौजवान हजरत उस्मान गनी का पहरा देने के लिए, उनकी हिफाजत के लिए मामूर किए जा रहे थे? इमाम हसन, इमाम हुसैन, अब्दुल्ला बिन जुबैर।
0: इनसे तो हया करते।
1: इन नौजवानों ने तलवारें सोंत ली कि अगर बागी आगे बढ़े तो लाशों के ढेर लगा देंगे।
0: उस्मान गनी है, इशारो हया आपकी पहचान रही है।
1: लेकिन कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए, उस्मान गनी के इशार पर उन्होंने अंदर से आवाज दी, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, अपनी तलवारें मियान में कर। मैं नहीं चाहता कि मेरी एक जान को बचाने के लिए मोहम्मद की शहर में मुसलमानों का एक कतरा भी खून का बहे। अल्लाह अकबर, अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन उम्मत मुस्तफा के नौजवानों के खून का इतना पास है उनको। उस्मान ने मौत को गले लगाना गवारा कर लिया, लेकिन मदीना के सड़कों पर जंग की इजाजत ना दी। मदीने की सड़कों पर जंग की इजाजत ना दी। वो आखिरी रात और आका का बुलावा, मशहूर वाक्या, जब जुमा की रात थी, शहादत से चंद घंटे पहले अमीरुल मोमिनीन को हल्की सी ऊंघ आई। हजरत उस्मान को हल्की सी ऊंघ आई
0: रही।
1: तो आप में क्या देखते हैं कि कायनात के ताजदार सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और उनके साथ अबू बकर, हजरत उमर फारूक भी हैं। आका ने प्यार से अपने उस्मान की तरफ देखा और कहा,
0: पहचान
1: उस्मान
0: नहीं है,
1: इन लोगों ने तुम्हें प्यासा रखा।
0: दो सखा उस्मान गनी है।
1: उस्मान ने अर्ज किया, जी हाँ या रसूल।
0: उस्मान,
1: आका ने फरमाया, उस्मान फिक्र ना करो, आज रात तुम हमारे साथ अफ्तार करो।
0: वो बेअत रिस्वान के फरमान नबी था, ये हाथ मेरा हाथ है।
1: उस्मान इकराम, जब हजरत उस्मान की आंख खुली तो चेहरे पर एक मलकूती मुस्कुराहट थी। उन्हें मालूम हो चुका था कि अब जुदाई के दिन खत्म हुए और महबूब से मुलाकात का वक्त आ गया है। उन्होंने सुबह उठकर नया लिबास पहना, खुशबू लगाई और कुरान मजीद खोलकर तिलावत में मशगूल हो गए कि जिंदगी की आखिरी सांसें कलाम इलाही के साए में गुजरें।
0: इशारो हया आपकी पहचान रही है।
1: 18 ज़िलहज्जा 35 हिजरी जुमा का दिन।
0: उस्मान
1: गनी को अंदाजा हो गया कि हज का मौसम खत्म हो रहा है। जनाब, अच्छा ये बागी कौन थे? आप भी सोच रहे होंगे ना कि एक अमीरुल मोमिनीन, समझ लीजिए आधी दुनिया का बादशाह, और ये कौन लोग थे? ये काफिर तो नहीं थे, ये हिंदू तो नहीं थे, ये मजूसी तो नहीं थे, ये मुसलमान थे। और इसके लिए मैंने तारीख के औराक खोले हैं आप लोगों के लिए और बताएंगे आपको, कोई गैर मुस्लिम नहीं थे उस्मान, हजरत उस्मान को शहीद करने वाले अपनों में से कुछ थे। कौन थे ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन वो आए कहाँ से थे? मिस्र से आए थे, कूफा से आए थे,
0: हबशा की मुसाफत उम्मत में रही अव्वली उस्मान।
1: बागियों को अंदाजा, बागी वो लोग जिन्होंने हजरत उस्मान के घर का मुहासरा किया हुआ था। अंदाजा हो गया था कि हज का मौसम खत्म हो रहा है और मक्का से सहाबा कराम की फौजें उस्मान की मदद के लिए पहुंचने वाली हैं।
0: आया आपकी पहचान रही,
1: मक्का से जो है पहुंचने वाले हैं। उन्होंने अब ताखीर करना मुनासिब ना समझा। इमाम हसन ने इमाम हसन और दीगर पहरेदारों को चकमा देकर, हजरत उस्मान के पहरे पर कौन है? उन शहजादों को याद रखेगा, इमाम हसन, इमाम हुसैन एंड अब्दुल्ला बिन
0: जुबैर के फरमान नबी था, ये हाथ मेरा हाथ।
1: तो कहते हैं कि इन ये जो लोग मौजूद थे, इनको चकमा देकर कुछ बदबख्त दीवारें फांद कर

0: हजरत उस्मान के कमरे में दाखिल हो गए।
1: सैयदना
0: उस्मान गनी सुकून से इंतहाई खुशियो खुजू के साथ कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे।
1: जो
0: एक बदबख्त कनाना बिन बशर
1: बड़ा
0: और उसने आपके सर मुबारक पर लोहे की सलाख से वार किया। बूढ़े खलीफा के सर से खून का फवारा उबल खून की पहली बूंद कुरान मजीद की इस आयत पर गिरी। और इस आयत के तर्जमा पसंद करीब अल्लाह उनके मुकाबले में तुम्हारी किफायत करेगा और वो सुनने वाला और जानने वाला है।
1: इस तौर के
0: एक और जालिम सौदान बिन हमरान तलवार लेकर लपका। हजरत उस्मान की वफादार और जान निसार बीवी सैयदा नाइला रज़िला अन्हा अपने शोहर को बचाने के लिए बीच में आ गई और तलवार को हाथ से पकड़ लिया। इस बेरहम ने तलवार को खींचा तो सैयदा नाइला की उंगलियां कट कर गिर गई। मगर उसने परवाना की। जालिमों ने पे दर पे कई वार किए। बूढ़े उस्मान का जिस्म लौलुहान हो गया। रूह कफ से अंसरी से परवाज कर गई और जमीन पर तड़पते तड़पते वो नूरे मुजस्सम दामादे रसूल खाले के कायनात के हजूर पहुंच गए।

जी जनाब, आप लोग भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नंबर, एक हमारा टेलीनॉर का नंबर है, नोट कर लीजिए कि उसके ऊपर SMS और कॉल कर सकते हैं, जो कि है 0344-936-3366, और जोंग का नंबर 0313-798-4544। इन नंबर पर आप मैसेज और SMS करके हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। ये प्रोग्राम आप भैया के वक्त तीनों स्टेशन डेयर इसमिल खान में ग्लोबल FM 91, पहाड़पुर में रेडियो पैगाम और टांग में रेडियो अमन से बराह रास्त सुनते हैं। और इस प्रोग्राम को पेश करने का मकसद क्या होता है कि हमने बहुत ही म्यारी, बहुत ही कमाल की प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए बनाई हैं, जिनका ताल्लुक आप लोगों की सेहत के साथ है, जिनका ताल्लुक आप लोगों की खूबसूरतियों के साथ है। और अगर आप अपनी स्किन को इस गर्मी के अंदर खूबसूरत रखना चाहते हैं, तो केसन ने कुदरत के खजानों से, कुदरत के जो खजाने हैं जैसे कि ज़ाफरान, हल्दी और संदल से मिलकर जनाब एक सोप बनाया है, जिसका नाम है केसन ज़ाफरानी सोप। जैसे कल मैं जिक्र कर रहा था केसन मिल्की सोप का, केसन का हर एक प्रोडक्ट जो है वो अपनी जगह पर एक ब्रांड है, और हर एक प्रोडक्ट के दर्जनों क्या, सैकड़ों क्या, हज़ारों कस्टमर एक प्रोडक्ट को पकड़ के ठहरे होते हैं। जिस तरीके से मिल्की सोप के अपने कस्टमर हैं जो हमारा मिल्की सोप कभी नहीं छोड़ सकते, उसी तरीके से ज़ाफ़रानी साबुन के अपने कस्टमर हैं जो ज़ाफ़रानी साबुन को कभी नहीं छोड़ सकते। केसन नेचुरल पाकिस्तान हर एक प्रोडक्ट को इतने प्यार से बनाती है कि जो कोई उसको इस्तेमाल करता है तो उसके अंदर जो कुदरत के ख़जाने हैं, जो उनके रिज़ल्ट हैं, वो वाज़े तौर पर उनको अपने चेहरे के ऊपर नज़र आते हैं। जैसे कि मास्टर फतीउल्लाह साहब कह रहे थे कि उनकी उम्र 50+ है और उनकी हड्डियां भी कमज़ोर हैं, जिस्म में दर्द रहता है, लेकिन उनको बहुत हद तक, काफ़ी हद तक इस आयल ने अफाका दिया है। लेकिन इसी तरीके से हमारी वेट कम पेट कम हर्बल प्रोडक्ट है, जो कि फक्की की सूरत में है, और इसके हैरान कुन नतायज लोग हमें आके बताते हैं कि जनाब इसने इतने अरसे में वज़न को कम किया, उनकी शुगर लेवल जो है बहुत नॉर्मल हो गया, उनका ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल हो गया, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो नॉर्मल हो गया। तो जनाब बहुत सारे मसाइल, कुछ ख़वातीन के पोशीदा अमराज होते हैं, अगर वो इस हमारी प्रोडक्ट को, अगरचे इसका नाम वेट कम पेट कम है और इसको नाम पढ़ने से ऐसा लगता है कि जैसे कि ये सिर्फ जो है वज़न कम करने वाली या फिर चर्बी को पिघलाने वाली प्रोडक्ट है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कीमती जड़ी बूटियों को शामिल किया गया है, तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो वो बंदा जो बंदा जनाब इसको अपने मोटापे को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करेगा, सबसे पहले उसका हाजमा सेट हो जाएगा, यानी कि जो भूख की ज़्यादती है, बेसिकली जब आप ओवर ईटिंग करते हैं, यानी कि आपको तलब होती है दो रोटी खाने की और आप अढ़ाई खा लेते हैं, तो वो जो आधी रोटी बचती है ना, वो चर्बी की सूरत में आपको मोटा कर देती है। तो जब आप वेट कम पेट कम को खाएंगे तो आपकी जो भूख है ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है जनाब। ये बेसिकली भूख को कंट्रोल करने वाली प्रोडक्ट है, ठीक है जनाब। जब आपकी भूख कंट्रोल हो जाएगी, यानी कि पहले आप रोज़ाना 2.5 रोटियां खा रहे थे, जैसे आप इस फक्की को इस्तेमाल करेंगे, वेट कम पेट कम को इस्तेमाल करेंगे हमारी फक्की को, तो आपकी जो भूख है वो बैलेंस हो जाएगी, ठीक है जनाब। आप एक्स्ट्रा जो है खाना नहीं खाएंगे, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा आपके जिस्म के ऊपर चर्बी नहीं आएगी, और चर्बी नहीं आएगी तो आप मोटापे का शिकार भी नहीं होंगे, ठीक है जनाब। तो आपकी ऑटोमेटिकली आपकी भूख को ख़त्म करने वाली ये प्रोडक्ट, जो बंदा भी इस मसले से दो चार है कि उसकी भूख कभी ख़त्म नहीं होती है। अब दो प्रोडक्ट हैं हमारी, एक हमारी प्रोडक्ट आपको भूख लगाती है और एक भूख को ख़त्म करती है। तो जो केसन का हाजमा कंट्रोल सिरप है ना जनाब, हाजमा कंट्रोल सिरप, ऐसे लोग जिनको भूख ना लगती हो, ठीक है जनाब, जिनको भूख नहीं लगती, तो वो केसन हाजमा कंट्रोल सिरप का इस्तेमाल करें, उनकी भूख खुल जाएगी और वो ज़्यादा खाएंगे और वो सेहतमंद हो जाएंगे, यानी कि उनका जिस्म ज़्यादा खाने से खुद ब खुद भर जाएगा, ठीक है जनाब। और दूसरी प्रोडक्ट हमारी, ये जो केसन की प्रोडक्ट है, केसन वेट कम पेट कम हर्बल फक्की, इसको इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि जनाब ये आपकी भूख को कंट्रोल करेगी, आप एक्स्ट्रा नहीं खाएंगे और आप स्मार्ट होना शुरू हो जाएंगे। स्मार्ट होने के साथ साथ ना सिर्फ वेट कम पेट कम आपकी भूख को बैलेंस करती है, बल्कि आपके जिस्म के अंदर जो मौजूदा एक्स्ट्रा चर्बी है उसको भी पिघलाने का काम करती है।

जी जनाब, ये हमारी प्रोडक्ट वेट कम पेट कम जो आपकी एक्स्ट्रा चर्बी को पिघलाने का हुनर जानती है। 15 दिन की जो फक्की है वो आपको मिलेगी 400 रुपए में, और अगर आप पूरे महीने की लेना चाहें तो वो आपको मिलेगी 700 रुपए के अंदर। देखो, ये चर्बी जब पिघलने का अमल शुरू होता है तो 15 दिन के अंदर ही आपको समझ आ जाती है कि आपकी जिस्म स्लिम हो रहा है। तो जो लोग डाइट करते हैं और जिनसे डाइट नहीं हो पाती है, ठीक है जनाब, यानी कि उनसे भूख कंट्रोल नहीं हो पाती है, बाज़ औक़ात तो लोग कहते हैं चलो जो मैं डाइट कर लूँ तो मैं खुद को कमज़ोर कर लूँगा, तो भाई डाइट वाले लोग जब वेट कम पेट कम को खाएंगे तो ऑटोमेटिकली जनाब क्या होगा, दो काम ये फक्की करती है। एक तो ये चर्बी को पिघलाती है, और इसका मेडिकल ये प्रूफ है कि जब आप वेट कम पेट कम का इस्तेमाल करें, अगर आपको लगे कि भाई मुझे इससे रिजल्ट नहीं मिल रहा या ये मेरी चर्बी नहीं पिघला रही, तो इसको चेक करने का एक तरीकाकार है कि ये काम कर रही है या नहीं कर रही। तो उसका तरीकाकार ये है कि आप जैसे 5-6 दिन इसको खा लें, तो उसके बाद आप लेबॉरेटरी चले जाएं और वहां पर यूरिन का टेस्ट करवा लें, ठीक है जनाब। और जब यूरिन का टेस्ट करवाएंगे तो आपने लेबॉरेटरी वाले से पूछना है कि मेरे पेशाब के अंदर, छोटे पेशाब के अंदर क्या आ रहा है, तो वो आपको

0: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-9363-780, व्हाट्सएप नंबर 0342-2648-435।